0: Raio Rádio News, ou no FM Porto.
1: सोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ज
2: उज्जवल भविष्य को लागी हम लोग अभियान
3: संचय सोलु एफएम स्टूडियो टाइम
4: 3 PM दूसरे 3 बजे
1: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतुन्न नगर पालिका 5 सोलु कुंभू
3: सीधा कुरा प्रश्न विचार उज्यालो रेडियो नेटवर्क अहिले दिउँसोको 3 बज्यो
4: यो समय किसान पाई प्रोडक्ट्स प्रालीको हो
3: राष्ट्रको शान किसान
4: अ कम्प्लीट पाइपिंग सोल्युसन्स

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: टाइम चेक सोलु एफएम स्टूडियो टाइम
2: 5 PM साँझको 5 बजे
0: टाइम चेक को साथमा न्यू स्टार डिजिटल कलर ल्याब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलु दुकुन नगरपालिका 5 सोलु खुम्बु

0: 才有话就能说路 FM 不断的
1: सोनु FM 101.2 MHz उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
2: सन्चे सोनु FM स्टुडियो टाइम
3: 6 PM साँझको 6 बजे
1: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वलामय अफसेट प्रेस सोनु दुतुन्न नगरपालिका 5 सोलुखुम्बु
0: हेप्सा हेप्सा

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकताको आवाज
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरञ्जन को अपूर्व संगम
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ज
2: उज्जवल भविष्यको लागि हाम्रो अभियान
3: Time check. Solu FM in studio time.
4: It's 7 p.m. Saatko saat baje.
5: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतकुंड नगर पालिका 5 सोलु खुम्बू

0: Sign check. Solu FM, studio time.
1: It's 8 p.m. रात को 8 बजे.
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुकुन नगर पालिका 5 सोलु खुम्बू.

0: প্রিয় ভাগুরা কষ্ট বিচার জানো রেডিও নেটওয়ার্ক অহিলে রাতিকো আট বজ্যো
1: यो समय किसान पाई प्रोडक्ट्स प्राली को हो
0: राष्ट्र को शान किसान
1: अ कम्प्लिट पाइपिंग सोल्युशन्स अहिले तपाई उज्यालो रेडियो नेटवर्क सुन्दै हुनुहुन्छ। अब प्रस्तुत छ आज बिहान आठ बजे प्रसारण भएको कार्यक्रम बदलिदो नेपालको पुनः प्रसारण।

0: बस उनके को मां या लुहावा चलता। 16-17 को उमेर मां जोबन को लहर चलता। कसे कसे ले ती तो मीठो याद हर तो दिए के होला है ना। हो ती याद हर नहीं हूं कुछ में रुमान छा दायो
1: आयो।